0: अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे सौरव मायती। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम के समापन अंश में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नमिता भट्टाचार्य का गाया ये श्यामा संगीत। तो आइए सुनते हैं ये श्यामा संगीत, कलाकार नमिता भट्टाचार्य।
1: You were listening to Shyama Sangeet. Our artist was Saurav Maiti. Concluding the program, we now present Shyama Sangeet. Our artist is Namita Bhattacharya.

0: हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। आज ही कलाकार थी नमिता भट्टाचार्य। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 2400 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी भक्ति संगीत।
1: यू वर लिस्निंग टू श्यामा संगीत। अवर आर्टिस्ट वॉज नमिता भट्टाचार्य। This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

Let's take it down.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए अभी प्रस्तुत है राग बागेश्वरी पर ख्याल गायन. कलाकार हैं जैनुल अबेदिन. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं प्रसन्न रुद्रा और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रतन नट्टा. तो लीजिए प्रस्तुत है राग बागेश्वरी पर ख्याल गायन. कलाकार हैं जैनुल अबेदिन.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल्स. Listen first to a khayal in the rag Bageshri. Our artist is Jainul Abedin. Accompanying him on the tabla is Prasanna Rudra and on the harmonium is Ratan Notto. Listen now to khayal in the rag Bageshri. Our artist Jainul Abedin.

0: अभी आप राग बागेश्री पर जैनुल अबेदीन से ख्याल गायन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रसन्न रुद्रा और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रतन नट्टा। कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी प्रस्तुत है राग झिंझोटी पर ख्याल गायन। कलाकार हैं जैनुल अबेदीन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं प्रसन्न रुद्रा और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रतन नट्टा। तो लीजिए प्रस्तुत है राग झिंझोटी पर ख्याल गायन। कलाकार हैं जैनुल अबेदीन।
1: यू वर लिस्निंग टू अ ख्याल इन द राग बागेश्री। आवर आर्टिस्ट वाज जैनुल अबेदीन। अकंपनिंग हिम ऑन द तबला वाज प्रसन्न रुद्रा एंड ऑन द हारमोनियम वाज रतन नट्टो। This is Ragam 24/7 on DTH, anytime, Indian music. Continuing the concert, our artist Jainul Abedin now presents a khayal in the rag Jhinjhoti. Accompanying him on the tabla is Prasanna Rudra and on the harmonium is Ratan Notto. Listen now to khayal in the rag Jhinjhoti. Our artist Jainul Abedin.

0: अभी आप राग झिंझुटी पर ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे जैनुल अबेदिन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रसन्न रुद्रा और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रतन नट्टा। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग झिंझोटी। आवर आर्टिस्ट वॉज जैनुल अबेदिन। Accompanying him on the tabla was Prasanna Rudra, and on the harmonium was Ratan Notto. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, आपने ट्यून किया है रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी संगीत कार्यक्रम में. आप सभी का स्वागत. सुनते हैं तबला वादन. कलाकार है पंडित आनंद बदामीकर. प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया तबले पर ताल छपताल सुनते हैं. आपके साथ हारमोनियम पर है उदय शाहपुरकर. तो आइए सुनते हैं तबले पर ताल छपताल, कलाकार पंडित आनंद बदामीकर.

ಫರ್ಮಾಯಿಸಿ ಚಕ್ರದ ಕದಿನಾತಾದ ತೆರೆ ಕದಿನಾತಾದ ತೆರೆ ಕದಿನಾತಾದ.

मितामीकर। आपके साथ हारमोनियम पर थे उदय शाहपुरकर। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं तबले पर ताल तीन ताल। कलाकार है पंडित आनंद बदामीकर। आपके साथ वायलिन पर संगति कर रहे हैं रत्नाकर गोखले।

ಧರೆ ಕಡಿದ

श्रोताओं, आप सुन रहे थे तबले पर ताल तीन ताल। कलाकार थे पंडित आनंद वदामीकर। आपके साथ वायलिन पर संगति कर रहे थे रत्नाकर गोखले। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH India Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है गुलाम दस्तगीर खां का सितार पर बजाया राग भैरव में आलाप और जोड़. विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now bring you a sitar recital by Gulam Dastagir Khan. He begins his recital with an alap and jod in rag Bhairav. The vilambit and drutgat are set to teen tal. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak.

0: अभी आप गुलाम दस्तगीर खां का सितार पर बजाया भैरव सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। और लीजिए अब सुनिए राग शुद्ध सारंग, विलंबित और द्रुतगत, तीन ताल में निबद्ध है।
1: You just heard a rendition in राग भैरव on the सितार by गुलाम दस्तगीर खां। He now presents राग शुद्ध सारंग। The विलंबित and द्रुतगत are set to तीन ताल।

0: अभी आप राम दस्तगीर खां का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू जस्ट हर्ड राग शुद्ध सारंग परफॉर्म्ड बाय गुलाम दस्तगीर खां। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक। दिस प्रोग्राम वाज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शहनाई वादन, कलाकार है प्रमोद गायकवाड़ और सहकारी। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग मधुकंस, सुनते हैं विलंबित गत ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तो आइए सुनते हैं शहनाई पर राग मधुकंस, कलाकार प्रमोद गायकवाड़ और सहकारी।

श्रोताओं, अभी आपने सुना प्रमोद गायकवाड़ और सहकारी द्वारा प्रस्तुत शहनाई पर राग मधुकंस। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं शहनाई पर राग यमन, कलाकार प्रमोद गायकवाड़ और सहकारी। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तो आइए सुनते हैं शहनाई पर राग यमन, कलाकार प्रमोद गायकवाड़ और सहकारी।

अभी आपने सुना प्रमोद गायकवाड़ और सहकारी द्वारा प्रस्तुत शहनाई पर राग यमन। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निधि थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए अभी प्रस्तुत है राग हेम बेहग पर सरोद वादन. कलाकार हैं सिद्धार्थ भोंस. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार. तो लीजिए प्रस्तुत है राग हेम बेहग पर सरोद वादन. कलाकार हैं सिद्धार्थ भोंस.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present Hindustani Instrumental Recital. Listen to a sarod recital in the rag Hem Behag. Our artist this evening is Siddharth Bhons. Accompanying him on the tabla is Devashish Sarkar. Listen now to the sarod in the rag Hem Behag. Our artist Siddharth Bhons.

0: अभी आप राग हिम बिहाग पर सरोद वादन सुन रहे थे। कलाकार थे सिद्धार्थ भोंस। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष सरकार। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी प्रस्तुत है राग बागेश्री पर सरोद वादन। कलाकार हैं सिद्धार्थ भोंस। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार। तो लीजिए प्रस्तुत है राग बागेश्री पर सरोद वादन। कलाकार हैं सिद्धार्थ भोंस। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार।
1: You were listening to a sarod recital in the rag Hem Behag. Our artist was Siddharth Bhons. Accompanying him on the tabla was Devashish Sarkar. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, Siddharth Bhons, our artist this evening, now presents the rag Bageshri on the sarod. Accompanying him on the tabla is Devashish Sarkar. Listen now to the sarod in the rag Bageshri, our artist Siddharth Bhons.

अभी आप राग बागेश्री पर सरोद वादन सुन रहे थे। कलाकार थे सिद्धार्थ भोंस। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष सरकार। ये आका

0: आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सरोद रिसाइटल इन द राग बागेश्री। आवर आर्टिस्ट वाज सिद्धार्थ भोंस। अकंपनिंग हिम ऑन द तबला वाज देवाशीष सरकार। दिस प्रोग्राम वाज अर्लियर रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियोज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता फॉर रागम 24/7 on DTH, anytime, Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में बांसुरी वादन. कलाकार है अभय फगरे. राग है धनकोनी कल्याण. विलंबित गत एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. संगत कलाकार है तबले पर सलीम अल्लाह वाले. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी बांसुरी रिसाइटल बाय अभय फगरे. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग धनकोनी कल्याण. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय सलीम अल्लाह वाले ऑन द तबला.

आप सुन रहे हैं बांसुरी वादन, कलाकार हैं अभय फगरे। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी बांसुरी रिसाइटल बाय अभय फगरे। यह है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे अभय फगरे से बांसुरी पर राग मालकौंस। विलंबित गत एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द बांसुरी रिसाइटल बाय अभय फगरे, यू विल लिसन द राग मालकौंस।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में बांसुरी वादन। कलाकार थे अभय फगरे। संगत कलाकार थे तबले पर नफीस अहमद। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी बांसुरी रिसाइटल बाय अभय फगरे। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय नफीस अहमद ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सबसे पहले प्रस्तुत है पंडित गोपाल कृष्ण द्वारा बजाया विचित्र वीणा। आप सबसे पहले राग गौर सारंग में मध्य लय में ख्याल बजाएंगे जो कि तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मुन्ने खां।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे पंडित गोपाल कृष्ण द्वारा बजाया विचित्र वीणा पर राग गौर सारंग। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया विचित्र वीणा पर राग श्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मुन्ने खां। आप मद्दले बंदिश बजाएंगे जो कि 3 ताल पर निबद्ध है।

अभी आप सुन रहे थे पंडित गोपाल कृष्ण द्वारा बजाया विचित्र वीणा पर राग श्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुन्ने खां। आइए अब प्रस्तुत है अरविंद पारिक का बजाया सितार वादन। आप सबसे पहले राग हंस ध्वनि प्रस्तुत करेंगे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मोहम्मद अहमद।

अभी आप सुन रहे थे पंडित अरविंद पारिक का बजाया सितार पर राग हंस ध्वनि। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मोहम्मद अहमद। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया सितार पर राग गुंजी कौस। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मोहम्मद अहमद।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे अरविंद पारिक का बजाया सितार पर राग गुंजी कौस। आइए अब सुनते हैं माबूद हुसैन का क्लार्नेट वादन। आप सबसे पहले भैरवी में ठुमरी प्रस्तुत करेंगे, तत्पश्चात भैरवी में दादरा प्रस्तुत करेंगे, इसके बाद पीलू में ठुमरी, पहाड़ी धुन तथा पंजाबी धुन प्रस्तुत करेंगे। आइए सुनते हैं माबूद हुसैन का क्लार्नेट वादन।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है विदुषी सविता देवी का गाया राग मिश्र खमाज में ठुमरी. बोल हैं कौन गली गयो श्याम. तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अख्तर हसन ने, सारंगी पर कमाल अहमद ने और हारमोनियम पर बल्लू खान ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal rendition by Vidushi Savita Devi. She is accompanied by Akhtar Hasan on tabla, Kamal Ahmed on sarangi, and Ballu Khan on harmonium. First listen to Thumri in Rag Mishra Khamaj. The words are, Kaun gali gayo sham?

0: अभी आप विदुषी सविता देवी का गाया राग मिश्र खमाज में ठुमरी सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए दादरा, बोल हैं बिकल जिया होई रे। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अख्तर हसन ने, सारंगी पर कमाल अहमद ने और हारमोनियम पर बल्लू खान ने।
1: यू आर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र खमाज बाय विदुषी सविता देवी। नाउ लिसन टू दादरा, द वर्ड्स आर बिकल जिया होई रे।

0: अभी आप विदुषी सविता देवी का गाया दादरा सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए कजरी। बोल हैं तरसल जियारा हमार। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अख्तर हसन ने, सारंगी पर कमाल अहमद ने और हारमोनियम पर बल्लू खान ने।
1: यू आर लिसनिंग टू दादरा बाय विदुषी सविता देवी। नाउ लिसन टू कजरी। द वर्ड्स आर तरसल जियारा हमार। शी इज अकंपनीड बाय अख्तर हसन ऑन तबला, कमाल अहमद ऑन सारंगी and Ballu Khan on harmonium.

0: अभी आपने विदुषी सविता देवी की गाई कजरी सुनी, और लीजिए अब सुनिए झूला। बोल हैं सिया संग झूले बगिया में राम ललना। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अख्तर हसन ने, सारंगी पर कमाल अहमद ने और हारमोनियम पर बल्लू खान ने।
1: यू वर लिसनिंग टू कजरी, नाउ लिसन टू झूला। द वर्ड्स आर सिया संग झूले बगिया में राम ललना।

0: अभी आप सुन रहे थे सविता देवी की आवाज में ये झूला। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद अख्तर हसन ने, सारंगी पर कमाल अहमद ने और हारमोनियम पर बल्लू खान ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू झूला बाय विदुषी सविता देवी। शी वॉज अकम्पनीड बाय अख्तर हसन ऑन तबला, कमाल अहमद ऑन सारंगी एंड बल्लू खान ऑन हारमोनियम। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं समर्थ रामदास की भक्ति रचना कुमुदिनी पेडनेकर के स्वर में।

समर्थ रामदास की भक्ति रचना आप सुन रहे थे कुमुदिनी पेडणेकर के स्वर में। भक्ति संगीत कार्यक्रम में आगे की भक्ति रचना है संजीव अभ्यंकर के स्वर में।

संत जनाबाई की भक्ति रचना आप सुन रहे थे, जिसे गाया था मालती पांडे ने। अब हम सुनाने जा रहे हैं शरद जांभेकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे शरद जांभेकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। भक्ति संगीत कार्यक्रम में अगली भक्ति रचना है संजीवनी जोशी के स्वर में।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना मधुसूदन कानेटकर के स्वर में। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है आरती ठाकुर के स्वर में।